ॐ स्वस्तिस्तु ॐ अविघ्नमस्तु नमः शिवाय ॐ सिद्धिरस्तु तत् अस्तु यन्नमः स्वाहा।